प्यार पिता देवेगा, पड़ोसी नहीं दे सकता। जो स्वाद अंब विचों आवेगा, अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख, जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकदा, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकदा। ना मां ना बाप, ना भैन ना भरा, ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डे। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लहंदे तों लैके चढ़दे तों लैके लहंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ, गुरु वर्गा

शांत में से ग्रथित रथवा हो दुग फेर बटाय जन दू देता हो सज रस दो का धर्म फेरत बाहो व्यति रखते का जो फिर

सत्कारयोग हाजिन साथ संगत जी पेशतर इसते के कीर्तन आरंभ किया जाए। दशमेश पिता जी दी असीस बख्शीश फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का शहीदी पुरब रल मिल के मना रहे हो, बतौरे कौम भागां वाले हो जिहड़े अपना गुरुआं दे दिन दिहाड़ मनांदे हां। सवेर तो आसा पूर्ण आसा दीवार दा कीर्तन शरण कीता है। मोहतरम सत्कारयोग बागी जी तो गुरु दे जीवन संबंधी शहादत संबंधी विचार शरण कीते ने। आप ते दासा ने तकरीबन 10:30 बजे तक कीर्तन करना है। आप जिन्ने एक बैठे हो ध्यान पूर्वक श्रवण करना। दूसरी अर्ज ए है कि इंग्लैंड दी इस फेरी समय इस स्टेज ते ए दास दा तकरीबन आखरी कीर्तन है। इस तो बाद आपके दास ने वापस देश परत जाना है। जेड़े सज्जन थले चाह पीन पै गए ने वो शक के आ जाएंगे। तुसी इस तरह एकाग्रता बख्शनी बहुत बहुत धन्यवादी होवांगा। रल मिल के गुरु दी खुशियां प्राप्त करिए। शब्द आरंभ है धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा। बीत जय है जन्म अकाज रे।

गुरु के सिख। आज जो कीर्तन का माहौल है, आप ते जो ये संगत के चरणा विच हाजरी भरन दा गुरु की हजूरी विच, सो सत्संग जीओ। हुणे आप जी ने बड़े सत्कारयोग दीदार सिंह जी चाना पुराने जो गुरसिख हन जिन्हां नूं पता है कि कीर्तन किवें गाया जांदा सी, अज हर एक ने कीर्तन नूं अपने स्टाइल नाल बना लिया है। जो कीर्तन की पुरातनता है, जो सिखना है, जो राग है, राग नाद सब सच है, पर इस नूं गावे कौन, इस नूं सिखे कौन। हां, पर कुछ गुरमुख प्यारे प्यार वाले पुरातनता जिन्हां ने हाली तक कायम कीती है, हुणे चाना साहब ने कहा कोई चीज सुनाओ। जदों भी कीर्तन शुरू होवे, अजकल महीनियां विच दरबार साहब की मर्यादा यह है कि बसंत दे विच शब्द पढ़िया जाए, सब तो पहला यह मर्यादा है। तो गुरु कृपा करे, मैं आप जी नूं बसंत बसंत चढ़िया फोली बन रहा है। ए जी जंत फूले हर चित लाए, गुरु ग्रंथ साहब कृपा करन ए हरियावल इस करते जो बख्शिश कीती है, गुरु ने जो कृपा कीती है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। और जो ए रीत है बड़ी पुरातन रीत है, गुरु अर्जन देव पातशाह जदों बसंत राग नूं खोलना, पंज शब्द बसंत दे पढ़ के उस तो बाद कड़ा प्रसाद करना, ए मर्यादा है। और जो ये ताल होएगा, ये पांच ताल दी बराबर दी सवारी है, अशोभ ताल है। आप बड़े प्यार सहित, क्योंकि सात संग जीओ असी किन्ना किन्ना पैसा जाके हालां विच खर्च करने हां, आर्टिस्ट लोगां नूं सुनने हां, कलाकार लोगां नूं सुनने हां जाके, पर जेड़े आप दे जोड़े चाण वाले कीर्तनीए हन, जद तक तुसी नहीं उन्हां नूं मान दोगे, ओह किहदे कोल जाणगे। सो बड़ी आप दी मेहर है, आपने जो ये थोड़ा जा वक्त बख्शिया है, पांच मिनट दे विच आप दी हाजरी पूरी करके, आप बड़े प्यार सहित गुरु अर्जन गुरु अमरदास पातशाह बसंत चढ़िया बसंत महला।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे ओढ़े वस्त्र का जर्म

आज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली बात, कहूं अश्व होए के बह

सदैया बिंद के सदैया ताहे हीज के बदाया अमंदर सदीव नंग पाए ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण ज्ञान के बहीन छिन के

सो अंत सो बहर अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश क्या सर्व लोक पूर्ण पद पार पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाई बैसंतरमा नानक का पातशाह दिसे जाहरा

0: साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का दूजा शब्द भी मन दे प्रति है। पातशाह फरमान कर देने
1: बिरथा

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचार रहा है भगत जी ने। उपर सिरलेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी का।

प्यारे गुरुदेव जी, सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी के चरण कमलों के नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री राग महला पहला दा इस शब्द है। इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, ऐ स्त्री, ऐ जीव स्त्री, जब तेरा फिर ही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया? श्रृंगार का की मतलब है? जब फिर ही नहीं, फिर वाली ही नहीं, तो तेरे श्रृंगारा का की मायना? श्रृंगार ते फिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं, तो बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नूं कहिंदे हन दर घर टोई नाल है। उसनूं ना दर घर दे विच किते भी कोई टोई नहीं हुंदी, दरगाह झूठ फुआर, अते दरगाह दे विच को झूठी हुंदी है, क्योंकि उसने किस लिए श्रृंगार किया, अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है, सब गुण तेरे गल चुके हैं, अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी, तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं, फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी पत्नी सी, औरत सी, ऐ काया, जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई? फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा। अते उस फिर तू वाहिगुरु तो, अकाल पुरख तो, आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असि सुनिया सी ना, हर बिसरत तेरे गुण गले। जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं, अंदर टोटल रॉटन हो चुका है, तो तेरे बाहरले श्रृंगार, बाहरलियां सुगंधियां, बाहरली सजावट, मांग छपाया होया संधूर, पहने हुए गहने, कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नू ये छुपा सकेंगे? जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं, रॉटन हो चुके हैं, अंदर तेरी दी ये तस्वीर है, तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ है? गुण गल चुके हैं, आज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना, क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं
ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ

तेरे ता मिलना है जे गुण होन वो तेरे गल चुके हैं। इस रीरा मेरे इस जग में कि क्या तुझ कर्म कमाया, तू कुछ भी नहीं कमाया, उस वाहिगुरु नालों दूर होके हर बिस्तर तेरे गुण गलिया, शरीर नू तू समझा ही नहीं, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन मंदर वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन दुर्लभता वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन सब तो उत्तम अते श्रेष्ठ होने वाले, इस दे विच गुण ही नहीं हन कि इसनू सरोवर आख्या जाए, सारे गुण तां गाल लए हन लोभ नाल, लालच नाल, हंकार नाल, क्रोध नाल, काम नाल, आदि चीजां दे नाल तैं सारे गुण गाल लए हन। काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा डाले, सारे गुण तैं गाल लए हन ते गुणा तो बिना तो उपर मिलदा ही नहीं है। कहंदे हन जे गुण होवन ता पिर मिले, अपने दिल दी तख्ती उते इसनू नोट कर लो, हिरदे उते इसनू उकर लो, इसनू लिख लो कि अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती जो है, अकाल पुरख वाहिगुरु दी जो प्राप्ति है ओ गुणा दे उते आधारित है, और ओ गुण जिन्हां दी कोई कीमत नहीं है वो बाजार विकदे नहीं हैं, तुसी खरीद नहीं सकते, अमुल गुण हैं, अते अमुल गुणा दा तू व्यापार नहीं कीता, अवगुणा दा तू व्यापार कर दी रही है, अवगुण तू सिख दी रही है, लेकिन ओ ते अमुल गुण हैं, अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार। कहते हैं

इसका अर्थ हर गुण गंफो, गंफो मैंने माला प्रभु, हार प्रभु, गुंदो केंदे हर गुण हरी दे वाहिगुरु दे गुणा दी माला प्रो के गल दे विच पहन लो। कितना पवित्र, कितना उच्चा सुच्चा बाबा जी का उपदेश है। अकाल पुरख वाहिगुरु की भगती करनी है, भगती दे विच वख वख स्टेजेस हैं, वख वख स्टेजेस हैं। एक स्टेज है जिथे सुरत शब्द का समेल हुंदा है, सुरती दे नाल ध्यान दे नाल अपने अंदर उस परम ज्योत नू अनुभव किया जाता है, सुरती दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु नाल लिव लगाई जाती है। पर असी की उस हुणे ही उस अवस्था च हां कि असी कर सकांगे? साडा तो मन जिहड़ा असी पाठ करन बैठांगे तो इधर उधर खिंड जाएगा, वो एडवांस लैवल है। भगती दी एक स्टेज दे विच ज्ञान बड़ा परिपक् हुंदा है, गुरु दा ज्ञान, तपन तप गुर ज्ञान, तपां दा तप है गुरु दे ज्ञान नू अपने अंदर उतार लैण, गुरु दे ज्ञान नाल अपने जीवन नू अपने विचारां नू भर लेना, अपने विचार अपने ना रहन, सिर्फ गुरु दे विचार ही विचार साडे अंदर रह जाण, अते उना विचारां नू एक्सरसाइज करनी, ए भी एक मंजिल है। तो अलग अलग अवस्थावां हन। दास तों अज भी पुछया गया कि ए सब कुछ सुनिया है पर असां हुण की करना है। असी हाईएस्ट लेवल तो ते आरंभ कर नहीं सकते कि बहुत कोई उच्चे अभ्यास की गल की जाए कि सुरती नू दसन द्वार च किवें टकाओ, त्रिकुटी च किवें टकाओ, ओ ते काफी सारी अवस्था बनन तो बाद काफी सारा सिमरन अभ्यास बोल के करन तो बाद आहिस्ता आहिस्ता ओ जो परिपक् हुंदा है तो फिर असी उस अवस्था ते जाने। सब तो पहला ते सानू भगती करन दे वास्ते जेड़े जरूरी गुण हन उही धारण करने पैणगे ते उही सिखने पैणगे। जे उठना बैठना ही नहीं आंदा, गुणा दा भाव उठना बैठना ही नहीं आंदा, खाना पीना ही नहीं आंदा, बोलना चलना ही नहीं आंदा, ते गल्लां असी करिए बहुत डीप लेवल दियां, ब्रह्म ज्ञान दियां, सुरती दे अभ्यास दियां। सुरती दा अभ्यास किवें हो सकता है? सुरत शब्द दा अभ्यास किवें हो सकता है? अंदर वो इतनी सूक्ष्म वस्तु है, हर जी सूक्ष्म अगम है कहो कितविद मिलिया जाए, वो इतना सूक्ष्म है, मत साड़ी इतनी मोटी है कि जिसनू उठना बैठना नहीं आता, ओ मोटी मत ओ सूक्ष्म वस्तु नू एकदम किस तरह नोटिस कर लेगी, किस तरह उस दे नाल जुड़ जाएगी, जिसका ना कोई रूप ना रेख ना रंग आकार शकल कुछ भी नहीं है, असी उस दे नाल किवें जुड़ सकते हाँ जबकि असी सामने जींदियां चीजां दे नाल सही तरह जो है इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जब सानू उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, ये तमाम जीवन दे विच जो वर्तों च लियाउण वाले शुभ गुण हन, अगर यही नहीं आंदे तो सब तो पहला सानू वो गुण सीखने पैण। बाबा जी बाणी दे विच आखदे निर्गुण राम गुणे वस होए, उसने जित

सत्य संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहिंदे आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नू, जदों ओ पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जांदी है। कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नू उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई होवे, श्रृंगारी पई होवे। पर किहड़े किहड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना लो, इस श्रृंगार बना लो। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के कम आना। क्योंकि जो लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उत्थे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ए असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नू जो महाराज जी ने जोड़िया है उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देन वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नू देन वेले नहीं संतोखी बन जाना। उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवा लै लवा, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिर। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नू हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नू देख के उसनू बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना लो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछया है, यह सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी, उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजा नू एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शन दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भगती आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभाअ दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकदा, तुसी भगती नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इसनू अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगन कसम लाओ महाराज के चरण च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस हो। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया, कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण? क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नूं दूर कर देना, वो अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसी तो अपने आप नूं सुपीरियर ना समझना, ये नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसी भी तरह मेरे तो कम है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ये आदतां हन, ये सुभाव हन, पहला ये तारण करने हैं। अज असी
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਓ ਅਗਲੀ ਇਸ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜਾਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਹਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ,
क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू ओबलाइज करन दे वास्ते, लोगों नू ओबलाइज करन दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियां च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसीं? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है, उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सुच, कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन। सील संजम सुच, सुच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नूं वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नूं सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच दा नामो निशान नहीं रहा, असि नाले खाई जाने हां नाले लिखी जाने हां, नाले खाई जाने हैं नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही जूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी, कहते पन दिती है, ये अवगुण हैं। खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही, तो ये बनाया किसने है, किवें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है जां नहीं बनाया, खाज अहाज जो गलत मलत है वो असी खान लग पे। रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं, तुसी कदे सोचो ते सही वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवन्स दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन दी शांति चाहते प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, कोई भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं, पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म की एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने तैयार किया है, तो असीं बाहर बैठ के उसनूं रैलिश करते हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन, कितने ऐसा तो नहीं कि साढ़े ही खाने नूं उसने पहला टेस्ट करके देखा हो स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू वी नो। पर साढ़े च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई हैं पूछने लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहा नो आई हैव माय ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट टेकिंग इवन टी फ्रॉम अस एनीथिंग इवन वाटर, मैं क्या इसका कारण यह है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोकां दे जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं कहा हैव यू वॉश योर हैंड्स, कहिंदी नो, मैं कहा देन आई कैन नॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वांट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश योर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं है। तो कहिंदी हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट, इस करके मैं कहा मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ये अवगुण हैं, असां ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ये तमाम पहनना ये सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता, ओह सबना की रेन का ताओ आओ हमारे पास, महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई, ओह सबना की रेन का ताओ आओ हमारे पास, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सटिए मूह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए, पाणा जुतियां नू आखदे हन, कहिंदे हन दरगाह च उसदे जुतियां पैंदी हन। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो तो तुहाडे उते आ कुछ लागू हुंदा है, फिक्का दरगाह सटिए मूह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए उसनू मूर्ख आख्या जांदा है,
سو کس طرح فقہ بول سکتے ہو؟ اے تمام چیزاں نو آلٹر کرنا ہے نا، اینا تمام چیزاں نو بدلنا ہے، یہ سارے شبھ گن اپنے اندر دھارن کرنے ہیں، جے گن نہیں ہن تے ون گن کیتے بھگت نہ ہوئے۔ کسے تو جا کے پکتی دا سوال نہ پوچھنا کہ پکتی کیویں کرنی ہے، جے اس دی گراؤنڈ ہی تیار نہیں ہے، جے شبھ گن ہی تیار نہیں ہے۔ اج گنا دی گل کیتی ہے، وچ از دا گراؤنڈ ورک۔ کل نو اسی جو من اور آتما دی تھوڑی جی وچار سمرن ابھیاس دی وچار کران گے، آپ جی کرپا کر کے سمے سے راؤ تاکہ کل نو شام دے کیرتن سارے کیرتن کنکلوڈ ہو جان گے۔ تو آؤ پریم نال اس پنکتی نو گاؤ کہ مندہ پھر بن کیا شنگار، پھر اکال پرخ واہگرو تا نیڑے آندا ہے، جے گن ہون جے او گن تیرے اندر گڑے پئے ہن تے او تے تیرے تو بہت دور چلے گیا ہے، تے تو اپنے آپ دی جو فلت ہے اگلی نس ہے اس نو تو صرف ٹکی جا رہی ہے شنگار کر کے سندر کپڑیاں نال، گہنیاں نال، کاسمیٹکس نال، پرفیومز آدھے نال۔ کہندے ہن اس شنگار دے نال واہگرو نے نیڑے نہیں آنا، کیونکہ اس نو تیری اندرلی حالت کا پتا ہے کہ اتنے ہر دسر تیرے گن گلے، یہ تیری حالت ہے۔ پریم نال گاؤ بند سما۔